0: fighting him.
1: खाना है ना खाना
2: मर
1: नपुर हाँ तो नहीं तो आजा चप्पल जली में खाने इंदी तो कोई मौरी लग में अरे कसम

इतिहास प्रमाणे कच्छ जो करो है मालधारी वतन, वो खीड़ू है बई थी भी उद्योग रोगा जो जमीनों जिना रही है माल बेचारा भेजे कि ना

Well, and you're not gonna win it? अत दाला दरोड़ा, दाला दरोड़ा लटका, वो लटका नहीं जाए, हो रही लटका नहीं, वो लटका नहीं, वो लटका

पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, मुझे मुझे मुझे हकल हकल, अरे हो कम का करी भी, पकड़ रहा, वो पानी पी भी की साड़ो करी भी, रोड़ा रोड़ा रोड़ा

0: पेट पण धणी वेचारा मेहनत करी था नैन में धणी वटे असा एवर आई मंजन इन बारे में 40-50 हज़ार जी दवाई कही है माल जी छता माल जी दसो ताई परी सीधी
1: हनी लाखोरी काचल रही वही ने लाखोरी हनी अड़े विचारे ने वेसा पे खणी हिंद घेट न वडा मनु में वे कासल था कड़ो हजार आतारा में निकरो था हन
2: ओहो वी दाड़ी तपावा तो हिंदी के कड़ो कड़ो मत के ओइल जो न दवा जो अच्छी नहीं खपे तो इधर रहो ने खपे तो जावा दे सामी ना आई जगह अतुर राशि था को तो

आई पंड उठन गया का कथो आई के गोरा त ने मने अठो अधिक करे वराय दे गाई पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वराय छडन दा तपन को कोंडा एतरो मारो हजार 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

0: वालेकुम सलाम। ठीक आई? मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ यानी बने टाइम जुड़े थे तो ना बने आला ही। हाँ टाइम जुड़े ना तो जल जो कम मत हुई जी समझी कर पुता की रे पुरात जो चढ़ी तो ही तो पैर आचे होने में सुमो रही यार। हाँ
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है हमारे भान जी दुआ है।
1: दो आला ने मायत रंजी है
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: इधर वाली भी आई कर दे
0: इधर शायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को साड़ी बनानी
1: बेवफाई शायरी
0: बेवफाई जी
1: आओ
0: बस तो के गायल करे भाई।
1: हाँ क्या तो धंधा करो करो जरा
0: धंधा उठा कर दिया लाइन तो रहती मेरा कहीं यहाँ जर दसा जे समझे नौ रशीद बेच में आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर याला ही रहती मांडा मांडा को लोक नहीं जरे
1: तो गाड़ी दादी भी गाड़ी में लगी हुई है तो गाड़ी दादी भी गाड़ी ले गाड़ी में लगी हुई है तो
0: ना रे गाड़ी ने जंजे टक नहीं उठा गाड़ी बरोबर न तेरे ती मेला है पे गाड़ी में खटारा में काव धका चले जा।
1: यही बात ना किया है
0: इनका ना पड़े साधन सीधा ये धंधो बरोबर ना पड़े कौन टोला था जो तुम्हारे तारे दे पे हो जे टोकरो बेड़ो तो जे
1: रेती भी भरो तो ना जड़ी में कोई फेरा तो करूंगा ना
0: हाँ तो रेती नहीं भरे कर गोठम खाली करने का
1: बोटम खाली करनी थोड़े पैसे तो उठाओ देन
0: कितने 100 रुपया कितने 150 कितने कड़ा 120 या 300 होगा। कायम ही 100 रुपये फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 कड़ो 100 रुपये 4 हो कितने कड़ा 5 वजन
1: नंबर एक नठा हुआ है
0: नंबर एक नहीं बिठाओ को फिर ना कन हलना कन का।
1: मैं YouTube पे तो खोल दी शायरी बनाई और गाटा गाटा खोल दी हलाई हुई है YouTube पे शायरी तो जिन खोल के मैं पसंद क्यों आने लाइक किया बोला
0: ठीक यार ये तो आभार
1: ये मैं आभार कौन है इनकी तो शायरी लेके दादा मुरंगा
0: ओ उधर है वो। आए वो निगाह जो हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलो अप करो ने चाहे सजो की करो ना बराबर तो हो जो फोटो डाला है टाइम जुड़े तो ना बना हला सेटिंग।

0: Ahora me llega.
1: ¿Qué quería dar?
2: ¿Qué
3: te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
4: ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
3: ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?
4: ये तो ना कि मेहनत न थी कि राशि कारण न थियो कि नहीं दवा न थी जाम थी
3: हेड में पांच खाले रखे हुए भेजे थे समझ के नो
4: सी आई पांच आई
3: मतलब तो हमें पांच नहीं भेजे बच्चों नहीं
4: थी थी ये कदरत जोड़ा है तुम
3: क्या बेकार रखे
4: हैं जोड़ा ही पांच वसन भाभी रही
3: मनी वाले बब्बू उधर कहीं करना का भाई वाला

0: से तो
1: लोहन करे गनो हैं
0: निबारी छे
1: हां
0: पर पांच मन टटी गयो वस्तु इतनी निगा नुकसान थई नी कोन के नाराज ई आने पांच बचई में ना
1: हां
0: कुदरत दी दी एनी में जवाब
1: एनी में थई जो गल सच है
0: बाकी पहला वाडे जो ना दवाड़ी धन फेरा नहीं आज चाना सो उतरी हुई मान
1: पण आई लगो वरी अच दवा सामन रे उठी में ਉਠੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਜਾ
0: ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਪਾ ਪਾਨੇ ਨਾ ਨਾ
1: ਅਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ
0: ਨਾ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਂ ਤੇ ਜਾ
1: ਹੈ
0: ਅੱਲਾ ਵਗਰ ਕੋ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ
1: ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
0: ਉਹ ਖਾਪੇ ਉਹ ਢਾਕਾ ਯਲ ਨਾ
1: ਗਾ ਰਬਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਬੱਬਾ ਗੰਨੀ ਗੰਨੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਦੋ
0: ਇਹ ਨਾ ਚੰ ਆ ਜਲ ਨਾ ਚ ਮੰਨ ਨਾ ਤੇ ਤਪੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨ ਕਹਤਾ બાર્ધુ એન કે સામું ફોકો વાડ્યો તો સે આડે હો બલા
1: હે
0: બા બકરી દઈને ઓઠી ગેડાઈ
1: ફરી પાછો
0: મારાયું તે ને પાછો ગેડાઈ ઓની મે મળે સરખી થઈ
1: તો આઈ સમજી ગયો કે મન મે એડો એટલો આ કે થઈ ગયો કે મતલબ એ ઓઠી તે આ જો સમજી કે લેણા દેને ઓછી થઈ ગઈ
0: ઓછી થઈ ગઈ
1: બરાબર ને
0: મતલબ ઈ જીત
2: લો બરાબર જડી ઓ નજીક
1: નુકસાન પર નુકસાન નહીં
2: બરાબર
1: હા
0: ભવિષ્ય એન મેં ને ચૌધરી એ તો મોલ ને ચલ પાકે જો કુદરત જડા રોજી લખેલું હોય અનકે પા અપનાયું તડે પાકે અનમે ભાગ ભરે